जात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सुनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ। हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हार हार हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ता करज का गह कर तरिया, मेरे माधो जी। सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया राव, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर। काहे मन पाओ करिया, ऊडे ऊडा वैसे कुसा। तिस पाछे बचरे चरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै।

बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेव है जो सेव है तुझ जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है हर त्याव है तुझ जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त भय जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फांसी, जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी, तिनका भाओ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुझ जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई।

मन एक न चेत संभूड मना हर विसरत तेरे गुण गलया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहवरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया।

काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आदंतिक अवतारा, सोई गुरु समझ हो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन

प्रजातर्त तब देहि अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहि धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील नाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, चाको भेव न पावत वेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव,

भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज से तजगिनी, उत पुज खान बहुर रचदीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पै शंकर कैठा, सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रनकाता, जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्टन जाहि निहरे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई, दुष्ट छा चव सकै न कोई।

न मानियो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहे हम एक न जानियो। श्री असुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तू ही बखानियो। दोहरा

धारता तेरा सब किच है, जिस देहे सु पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया, वाजी शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम धार मेरा, जिन कुखा सब गवाइया, कर सात सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटाहु, जिस तिया ए वटे आईया, कह नानक सुनहो संत हो, शब्द धरहु प्यारू। साचा नाम मेरा आधारू, वाजी पंच शब तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजी, कला जित कर धारिया। पंच दूत

तिथै तू समरथ जिथै कोए नाही उथै तेरी रख अग्नि उधर माही सुनकै जम के दूत नाए तेरे छड़ जाही।

0: सुनहार क्षत्रिया काल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: सतनाम

0: प्रीत कर गावो सोहेला सिद्ध सृजन हारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हो वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे गाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संबत सह लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन असी सड़िया जो हो सब सुमेल कर कर एहो पहुंचा सदले नित पवन सदन हारा सिमरै नानक से देह अमन राजा समान ना पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुरे को वे सने बाबा जय कर कर से कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तो रहा विच जसियां घड़ियां पैरा ते तिवारी महो होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तना श्री महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय पुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शुभ वाजंत पेरी रहो सहस तब नैन नैन है तो एको सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसके चानन सब मैं चानन होए गुरु साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लो वित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारन को हो जाते तेरे नाए वासा रा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुरु पाया मन हल मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पनवड्डा हे कर दंडौत पनवड्डा हे रहाओ साकत हर रसाद न जाने तिन अंतर हो मैं गंडा हे जिन जो चले चुके दुख पावे जमकाल सह है सिर दंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मरण हो खंडा हे अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु सोखंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख बड़बड़ा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है रागौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा घाट चलो हर लाह आगे बसन सोहेला औद कटै दिनस रहना रे मन गुर मिलका सवारे रहा एहो संसार विकार संसे में तरेओ ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वह एहो रस अकत कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पाओ सुख सहजे बोर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन किए पूरे नानक दास
1: सुख मांग मोगु

जलै। संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन ते सब जाय, संत कै दुखन नीच निचाय, संत कै दुखन नीच निचाय, संत दुखी का था कु नाय, नान संत भावत आपी गत पाई, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक निंदक न पाई, संत का निंदक मात यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी यार तेहीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत के निंदा दुख में दुख, नानक संत भावे उसका पी हुए मोह, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का निमित्त, संत के दुखी को डाल लग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख तेटरे, संत के दुखी को ना इंठाओ, नान संत पावे तन लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी कित काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जिन सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किच नाहि, अपन भी जापे ही खाए, संत के दुखी गवर्न राखन हार, नानक संत पावे तन लय उबार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहुं मछली तल फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पाव गिंद नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै तेला, ज्यों बाड़ तिल खेत माहिं दोहिला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, कीर्त निंदक का तुर ही पया, नानक जो तुझ पावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दर गह मिले सो जाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न तृष्ट है कोई, जैसा पावे तैसा कोई होय, भय कीर्त न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब गढ़ दिसके उकर नहार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की शुद्ध करो दिन रात, तिसे त्याहु सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खिलाफ करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे जैसा अपन नाम दे बड़ भागी, नानक जन से सलो, तजो से आनप सुरजन हो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए, अष्टपदी मानु की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक कह भगवान, जिसके दिए रह अघाय, भोर न दर्शन लग आए, मारे रखे कुआ मानु कह किच नाई, हाथ इसका हुकुम भू सुखोय, जिसका नाम रखंड पुरो, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक विघन न लग गए कोई, उसद मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पीयु सदा सुहेला, कर लह जीव नन उपेक ठाकुर का रंग, सा संग बिन सह सब संग, चरण चलो मारु गोविंद, मिटे पाप जपी हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक जिन मत्था बड़ पागी, ते जिन जग माहि सदा सुधार के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, शीतन मंत गणी संसार, मंथन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एक को एक एक पहचाने, तुत के सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानो, तृष्णा बुझै सा संग हर हर जिस कहत, हर सर्व रोग का हर जन रहत, सा संग हर हर जिस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, अंजन कीर्तन केवल बकियान, गृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जी जन की आशा, तिसकी कटी जम की फासा, पार ब्रह्म की जिसमन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रमंच ते आवे, सो संग सुहेला नहीं दुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सो दस सो दस सो दसी जिया, गुरु प्रसाद ता सब बुझिया, जब देखो तब सब किच मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, नै कि जन्म नै किच मरे, अपन चलता भी करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगुण मैं, अपन के जुग त्रिष्ठा पुथाप, अवनाशी नाही किच कांड, तारन तारे हो ब्रह्मंडल, कपे पुरख प्रताप, अवज पाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सु सुभावंत, सगल संसार द्रे तिनवंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल लय कृपाल, गुर का सब जपै निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड़ पागै, नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरखोत्तम करमान, जो किच करै सुप्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हुवै सो होए, करनै हार पछाणै सोए, प्रभु का किया जन्मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस्माय समाय, सुख निदान उन्हों बने आए, आपस को आप दिनु मानु, नानक प्रभु जन एक को जान, श्लोक सर्व

नानक इह धन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार और उपाव समीत विसारो चरण कमल रिद्ध में और तारो करण कारण सुप्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवथ इह धन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन वाहे सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस धन को चार कुण टुटता वै सो धन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाचै मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरणी अनिक उपावी रोग ना जाए रोग मिटै हर औख जाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन प्रभु तू हर कह नाई दास दिस्तावत आवै ठाए ताको बिघन न लागे कोई जा कह हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होयास भगत पाया तम प्रगास तित कर जाए बसे बिनासी कौ नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गवन मिटै प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव अमृत जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक उपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटा वह मूर्ख मना सुत मीत कुटम्बर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार असहस्ती रथ सवारी झूठा टंप झूठ पासारी जिंदी तिस बुझे न बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तूले ए आने भगत बिना बोडू बेस्याने हर की भगत करहो मनमीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मनवाही जन्म जन्म के किल विक जाहि आप जपु अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाऊ सह सुभाय नानु गुण गाओ गुण गाव तेरी त्रस मैल बिनस जाय हो मैं बिक फैल होये चिंत बसै सुख नाल सास ग्रासर नाम सुमाल छाड़ सियानप सगली मना सा संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार यहां सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सालाहि एक सिमर एको मन आहे किसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर हो प्रभ्याप अनिक विसार एक ते भय एक आराध प्राचित गए मंथन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी शरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल स्यो लागे प्रीत भगत करूं प्रभ की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट मां सुख हुए हार रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जंत्र बताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगास अंतिम लिवलाग बड़भागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होए दयाल सेवकीनो सदा निहाल
बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी श्रद्धा सपूरी, राव रया सत्संग हजूरी। जिसका साथिन लिया मिलाए, नानक भगति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पाने, सो क्यों बिसरै जे किया जाने। सो क्यों बिसरै जन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै। गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया।

सिमर सिमर सुख पावहु। आप जपहु अवरै नाम जपावहु। भगत भाई तरिये संसार, बिन भगती तन हो सीछार। सर्व कल्याण सुख निदनाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख काहु वतनास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही सुआउ। नेत्रो पेख दर सुख होए, मन बिकसै साध चरण तो होए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस्त दी जय कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाय, नानक रहया सर्व समाय। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सोए पुनीत, भगत भाई लावे मनहीत। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनिक राज भोग वड्याई, हर के नाम की कथा मन पाए। बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास। श्लोक सारगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। अपन किया नानका, आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार इह कछ न दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमाथ। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख शोक कहो किसे व्यापत। जब अपने आप अपार ब्रह्म, तब मोह कहा कि सोवत परम। अपन खेल आप वरती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप अपनी जोत धरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चलताव करने हार, नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपने आसन, तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभिगत अगोचर प्रभेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाते,
तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे, अपना पापिए चर जाओ, नानक अपन रूप आपी उपर जाओ, जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो हो क्या तोता, जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगतीश, तह चल छिद्र लगत कहो कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भूख कवन तृप्तावै, करण करावन करनै हार, नानक करते का नाही सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तह वेद कतेव का कूचीन, जब अपने आप उरतारे, तो सगन अप सगन कहा बिचारे, जे अपन ऊच अपन आप नीरा, ते कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा, विस्मन विस्म रहे विस्माद, नानक अपनी गत जानो आप, जय अचल अछेद अभेद समाया, ऊहा किसह व्यापत माया, आपस को वप है आदेश, त्यह गुण का नाही परवेश, जह कह एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता, जह अपनाप आप पतियारा, तह कौन कथै कौन सुनने हारा, बहु बेअंत उचते उचा, नानक आपस को आप है पहुँचा, जय आप रचियो परपंच कार, त्यो गुण मह कीनो विस्तार, पाप पुन तै पई कहावत, को नरक को सुर्ग बंचावत, आल जाल माया जंजाल, हौ मैं मोह परम पै पार, तूक सूक मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बख्यान, अपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तो नानक कै,

तनही, उनकी शोभा उन्हु बनी। आपह कौत करे अनद चूज, आपह रस भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन ना इलावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार था गंते अतुलै, ज्यों बुलावो

नानक सगल सृष्ट का जीता, जी जंतर सबता के हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस रखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनहु बिसारे, तिस तज अवर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय।

अनु साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जन आप अंतर जामी रहो व्याप रत पाले जीयन बहुपात जो जो रचियो सोति सहत्यात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करहे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक जानिया

अन दिन पूजहै गुर के पैर। ए लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपहि मिले।

जिस मन बसै तिस साच परिखिया, मन तन नाम जपहु लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करहु व्यापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माही, नानक बहुर नया वह जाहे, तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरे रखन हार ते आए, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोए न पहुचन हार, सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सोत निहाल, ताकै निकट नयावत।

श्लोक ज्ञानंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पिटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सकट माही अनिक रंग नाना दृष्टाही नौ निदमृत प्रभु का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचर्ज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरण माहे आकाश दयालु सर्वलोक पूर्ण प्रतपालु बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माही चार कुंट दह दिसे समार चार कुंट दह दिसे समाही इसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ भेद प्राण सिमृत मह देख सस्य सो नखेत्र मह एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेल खेल बोल न पाई है गुण है अमूल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धारे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नासु नानक तिन में इहु विसासु संत जना का पिखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने सुबचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस किए रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभु जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत तिस भाव है ता करे विस्तार तिस भाव है ता एक अंकार अनिक कला लखी नह जाए जिस भाव है तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आपा भरपूर अंतर गज सियाप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूतावर तारा सर्व नैना पिख नहारा सगल समग्री जा का तना पंजा सापी सुनावन जानिकेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सब कै मद लिप्तो रह जो किछ कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा भावै ता ले समाई स्ते हुए सुना ही बुरा और कहो किने कच करा आप भला करतु तत्निकी आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साच ओत पोत अपन संग्राच

सतनाम कर्ता पुरुष निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल केव सचियारा होइयै केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईया है इक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निसाण गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा ते लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै विप्रवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या भाउ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार मुहौ के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वटियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसुणी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर न आवई तवात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुना है सिद्ध पीर सुरनाथ सुना है धरत तबल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है ईसर बर्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है सास्त सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश
सुनाए सात संतोख ज्ञान, सुनाए आठ सठ का इशनान, सुनाए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनाए लागे सहज त्यान, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए सारा गुणा की गाह, सुनाए सेख पीर पातशाह, सुनाए अंधे पावे राहो, सुनाए हाथ होवे असगाहो, नानक भगतां सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै सुरत होवै मन बुद्ध, मनै सगल पवन की सुध, मनै मोहे चोटा ना खाए, मनै जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै मार्ग ठाक ना पाए, मनै पत स्यों परगट जाए, मनै मग न चलै पंथ, मनै धर्म सिति संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै पावै मुख द्वार, मनै परवारै साधार, मनै तरै तारे गुर सिख, मनै नानक पवै ना भेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावा है दरगह मान, पंचा सो है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कहे करे विचार, करते कह करण नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझे होवे सचियार, तवलै उपर केता पार, धरती होर परै होर होर, तिस ते पार तलै कवण जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुढ़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता ताण सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फेराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरां सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तेव तेव पाहे, जेता कीता तेता नाहो, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार,
ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੋਖੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਉਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਵਣ ਸੋਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸੇ ਰੂਪੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪ

कुल न होवनी जे तिस मन हो ना विसरा है। अंत न सिफती कहण न अंतो अंत न करण देण न अंतो अंत न वेखण सुनण न अंतो अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कहो जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगह जोद अपार किते गणत नहीं विचार किते खप तुट है वेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूरख खाही खाहे कितिया दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार। बंद खलासी पाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओ जाणै जेतिया मोहे खाए आपे जाणै आपे दे आख है से पे केई के जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारिये अमुल भंडार अमुल आवै अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फुरमान। अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है ब्रह्म आख है इंदो आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे ता आख न सक है केई के जीवड भावै तीवड होए नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल बिगाड़ ता लिखी है सिर गावा रंगावार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावण हारे किते राग परी स्यों कही न किते गावण हारे। गावै तुहनो पाउण पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंद इंदा सुन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावह जोद महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तहारे सही तो दोनों गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जे न रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखा कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै बेपूत चिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत गया।

दया भंडारण घट घट वाज है नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान हो वेखै उना नदर ना आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दो जी बहु लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस एत राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन सोर जोर ना सुरते ज्ञान विचार जोर ना जुगते छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमे करमे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कछ पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कूड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गलां कथियां ना जाहे जे को कहे पिछे पशुताए तिथै घड़िए सूरत मत मान बुद्ध तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भार पूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठगे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर पंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिव कार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल कड़िए शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवें छपाए छंद तुअ प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमित ओज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहु सहान गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वा सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अघादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग तिरमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग तिरवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभुगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्बामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देव नमस्तंग अपेव नमस्तंग अजनमे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्वगौने नमो सर्वपौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतंदे नमो सत अबंदे नमस्तंग नृसाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद द्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमित है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नृसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्व माने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पाहुणे
अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ती बेभूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वर परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वर परम वृदे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षी परमी अपोगी अपुगते नमो जोग जुगवेश्वर परम जुगते नमो नेत नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इष्णान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो एष्ट एष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध कर्ता अधो उर्ध अर्धं अघं ओघ हर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदि अपेदि अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरे शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात शांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपट शांतत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शांत त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरुष अपार सर्वमान त्रिमान देव आपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुष उदार मूर्त अजून आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख तो ताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जानम मरण बहीन चक्र बकर फिरै चतुर चक मानहि पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापहि जेह जाप आद देव अनाद मूरत थापयो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व सवरच्यो स्वयंभव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेशो अंग राग न रंग जाकह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अरवेख परम वेद पुराण जाकह नेत पाकत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार संत व प्रसाद
गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपाव प्रकाश नेस दिन अनास आजान बाहो शाहान शाहो राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग अपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपहय निकाम आत दूत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चाची शंतव प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात शांद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिश अधिश अदृश अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते कि आछेज दिस के अभिज पिस के अगंज कर्म के अपंज भरम के अभिज लोक के आदित्य सोक के अवधूत वर्ण के बेभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण के सर्वा अपर्ण के जगदंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनपाओ अनूप के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक अधीन के रोजी रजा कह रही मेरी हाक है के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अपूल गुनाह है के शाहान शाह है के कारण कुनेंद है के रोजी दहन दह के राज रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कली में के परमं वही में के आकल अलम है के साहिब कलम है के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमें सुल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परसत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निदान है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृगं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्व पागे सुसर्व अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अशुज है अशुत है कि नरकं प्रणाश है पृथ्वीउल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है जुवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंद है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है नचंत है सुनंत है अलेख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शंत व प्रसाद सर्वंघंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
प्रमातं प्रमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूप निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न ताता है न माता है न जाता है न पाता है निरसाकं शरीक है आमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशो सलाम है समस्त उल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुस्न चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहंद है के राजक रहंद है क्रीमल कुमाल है के हुस्न जमाल है गनीमुल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब के राह है के नरकुं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अभेक है जमीन जमा है अमीकुल इमा है क्रीमल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो बेपूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अभंग है मधुभार शांत त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंजो हर नर प्रपंजो अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अन शेज अंगो आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जाल थाल अमंड दिस विश अपंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनुभव अनासु त्रित तर तुरासु आजान बाहु एक सदाहु ओंकार आदो कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चेत चरण नाम अनशेज गात आजिज न बात अनझंझ गात अनरंज बात अनठठ भंडार अनठठ अपार अडीठ धर्म अतठीठ करम अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोर मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्व उभारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वभर है सर्वंकर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणा कृत है अकृताकृत है तरणी कृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है आरि गंजन है रे प्रतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग ताम संग शांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी आकामे एक अक्षरी शांत अजय अलय अभय अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाते अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात शांत नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बेभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मूल कुनिंदा समस्तुल निवासी
अजायब बेबूते गजायब गनी में हरियं करियं करिमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुबंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते स्वयं भव सुबंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं तव प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाविक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा होते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भलिए बेद न्यावत सीस ना जात बिचारे इते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही हाय राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गनय नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखाय सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सना दुर्जान दलेंगे भरि गुमान परे मन मय कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चारा सार की तार पशैया तोर तदेश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गड़े गड़ान को तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग शत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान अनेक सुवंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पात के प्रस है पाग ते नर फेर ना दे तरेंगे कहां भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशा को शीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पाश को मृतान कौ पूजन तायो कूर किरिया उर्जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर किरिया उर्जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवे ओ बाच बेनती चौपाई
हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पर, हमरे दुष्ट सबै तुम का वहो, आप हाथ दय मुहे बचा वहो, सुखी बसै मोरो परिवार, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिया, सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दे मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है, हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जजू करे हो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जछन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत, चिटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब अकरख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धार सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्बकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभव, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ काश भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपने बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा, एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहु उबारी, सर्ब ठाउर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, केल बेखो सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शाय करता,
श्री असतुज जब भये दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेलो सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर की राह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सदी अष्टमी रविवार तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जानेओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहेओ सब तुहे बखानेओ दोहरा सगल द्वार कौ शाड कै गहेओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ शाड कै गहेओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह रामकली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दो तगा वहो हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया इस नाउ होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल वेख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे वेचारिया एक भरम भूले फिरै दह देसो एक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै आवो हो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ तेरी कित द्वार पाई है तान मान तान सब सौंप गुर कौ हुक्म मन्ने है पाई है
हुक्म मने हो गुरु केरा गावो सची बाणी कहे नानक सुनो हो संतो हो कथे हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसै विट हो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले ए कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाना है आख है ता वेखा है सब तू है जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीने सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाए एक वेख पर सुन आया लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता हां केरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार ताज कृष्णा बहुत नाही बोलना खन्या हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलाहे तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जेव तू चलाहे तिवै चलै जिना मार्ग पावहे कर किरपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यो पावै तिवै चलावहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुर हो लिखिया आया एक फिरह कनेरे करह गल्ला गले किने ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटंब सहित स्यों पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसह जियो मलीन है कित संजम तोता जाए मन धोवो शब्द लागहो हर स्यों रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा एव जाए जियोह मैले बारोह निर्मल जियोह ता मैले तिने जन्म जुए हारिया एह तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनहो वे सारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिरै ज्यो बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिने जन्म जुए हारिया जियोह निर्मल बारोह निर्मल बारो ता निर्मल जियोह निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड की सोए पहुचै नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहै गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो हो सो सिख सनमुख होए
जेको गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावै मुक्त न होर थै कोई पुछो बबे किया जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए फिर

बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभागे अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की।

पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुक्म किया मन पावदे राहे पीड़े अगे जावना नंगा दो चालिया।

सबे काज सोहेलड़े थिए गुरु नानक सतगुर तुठा ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना।

सतगुर के जी की सार न जापै के पूरै सतगुर भावै गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै जो सिखा नो लोचै सो गुर खुशी आवै सतगुर आखै सो

नानक चलत न जापनी को सकै न लखे। श्लोक महला पंजवां। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवै चित, जित दिन विसरै पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। महला पंजवां। नानक मित्राई तिस स्यो सब किच जिस कै हाथ, कुमित्रा से कांडी है एक विखना चल है साथ। पौड़ी। अमृत नाम निदान है मिल पी वह पाई, जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह न काई, सगल

अविनाशी सुनिया जल थल महियल पूरिया घट घट हर भणिया ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सख

हर जस लिखे लाए भावनी से हस्त पविता अड़सठ तीर्थ मज्जना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखे।

सम्मान योग्य सत्संगीजनों, मैं आप जी नूं जिन्हां शब्दां दा कीर्तन सुना रहा हां कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी वडियाई विच जदों जदों भी जां प्रकाश होया, संपूर्णता होई, जां गुरता गद्दी ते गुरु साहिब शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान होए, जो हुक्मनामे आए मैं उन्हां दा कीर्तन कर रहा हां। थोड़ा जा मैं क्योंकि सानू गाउण वाले नूं दिक्कत हुंदी स्केल दा हिसाब किताब हुंदा गाउण दा, उस हिसाब नाल मैं उपर तो शुरू किया है। जिहड़ा नदेड़ दी धरती ते हजूर साहिब हुक्मनामा सानू बख्शिश होया सी जदों गुरता प्राप्त हुई शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, उस हुक्मनामे दा मैं कीर्तन कर रहा हां। दूसरा शब्द जो सी सतगुरु आयो सरन तुहाड़ी, ए जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बीड़ संपूर्ण हुई, गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी दर्ज की गई, 31वां राग दर्ज किया गया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दमदमा साहिब की धरती से सतगुरां नूं संपूर्ण रूप दिता, उस वेले का हुक्म है सतगुर आयो सरण तुहाड़ी। तो जो पहला हुक्मनामा सी, पहला प्रकाश पुरब वेले उसी संतां के कार्ज आप खलोया, सो मैं तिना ही वह पावन हुक्मां दा मैं कीर्तन करांगा। मैं नदेड़ दी धरती तो शुरू कर रहा हां, वो स्केल दी वजह करके कीर्तन शैली दे विच इस तरह हो जांदा। आओ जी मिलजुल के गायन करिए।

जन नानक सुख घर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है बच्ची दे परिवार नूं कि वो बच्चे का पल्ला बच्ची नूं पकड़ाउणगे जी, नाल पल्ले का शब्द गायन किया जाएगा। बेनती है कि पल्ले की रस्म अदा की जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ना खुशियां पाशाहियां जिस सतगुर नजर करे निमके हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। बड़े खुशियां परे मौके ते धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी पावन दरबार दी हाजरी भर के बख्शन लै रही परम सत्कार जो सत्संग जीओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की अकाल पुरख जी की अपार बख्शिश हुई है कि नवप्रीत सिंह सपुत्र सरदार बलजीत सिंह ते बीबी सिमर कौर जी दे आनंद कार्ज होए ने बच्ची जशनदीप कौर नाल जो सपुत्री है श्री हरपाल ते माता सोन जी दी बच्ची। सो इस खुशी पर मौके से मैं जिसे सपाक जोड़ी नूं लख लख बधाई दिंदा हां। उत्थे उन्हां दे माता पिता रिश्तेदारां साख संबंधियां मित्रां दोस्तां नूं सबनां नूं लख लख बधाई दिंदा हां ते नाल गुरु पातशाह अरदास करदा हां कि अकाल पुरख उन्हां दी जोड़ी सदा लई बनाई रखे। जोड़ी जीवै जुग चार तिहार ये गुरबाणी का फरमान है। तो इन्होंने अज चार परिक्रमा करके बिना बोलिया आप जी ने दोनों ने इस जीवन के अंदर एक दूजे का साथ देने लिए प्रण किया है। सो चेता रखना आप जी ने ते क्योंकि तंत्र गुरु ग्रंथ साहब जी साढ़े सिख धर्म के सब तो उच्च साढ़े वास्ते उच्च स्थान से। सो उन्हां दी बख्शिश हुई है गुरु साहब जी की ते गुरु बख्श करे आप जी नूं व्यवस्था जीवन दियां सारियां खुशियां बख्शे सफलतावां बख्शे नामदान बख्शे साडी अरदास है ते सदा सेवा संबंधी अंदाता बख्शता रहे। हुण मैं बेनती करां भाई साहब पान मनीत सिंह जी नूं कि उह सुभाग जोड़ी नूं सन्मान करनगे जी। आप खड़े होके सन्मान लै लोगे तो चंगा जी दोनों जणे।

मन नु जे कोई सकून शांति दे सकदा है वो महाराज दा नाम है। और ऐसी कोई पावर नहीं, ना पैसा, ना पदार्थ, ना तन दौलत, ना शोहरत, जे तेरे अंदर कोई चैन ते टिका बख्शिश कर सकता है वो सतगुरां दा नाम है। प्यार नाल खुद सतनाम श्री है। महाराज कह रहे ने तेरी आत्मा दी, तेरे जी जी जी दी जिहो जी भी इच्छा, रब ना करे कदे कोई औखा समा भी होवे ना तां भी अरदास कर। अक्सर लोकी दुखां विच ही अरदास करदे ने, सुखां विच। सतगुरु कह रहे ने दुख तदे जा विसर जाए, दुख तां आउंदे ने जदों तू उहनूं भुल जांदा। वड्डियां वड्डियां खुशियां विच फिर आपां शुकराना भुल जांदे। ऐसे ऐसे परिवार भी मौजूद ने, अपनी बेटी दी मैरिज है, ब्याह है, पर प्यो सारी पार्टियां सारे रिश्तेदार छड़ के अपना नेम निभाण चले जाता है। सारे रिश्तेदार कहंदे ने किथे चलिया गया, ते जिहड़े जाणदे सन ओह कहंदे ने भी दुनिया इधर दी इधर हो जाए उहने नेम नहीं छड़ना। अपनी बेटी दा ब्याह है पर नेम कुछ समय लई मिलण वास्ते अपना नेम निभाउण चले गए। जदों आए ते पुछया तुसी किथे चले गए सी, ते फिर हाथ जोड़ के नीवी पा के कह दिता जिसने ये खुशियां दित्तियां उहदा शुकर करन दिया, जिन्ने ये विध बनाई उहदा शुकर करन गया सी। सतगुरु कह रहे ने कल्ला खुशियां दा मौका ही नहीं, कल्ले पदार्थ ही नहीं, मन नूं भी ऐसी बख्शिश मिलती है, इंज लगता है भी तू ही बादशाह है, तेरे नालों सुखी कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई होर नहीं, जेड़ा सबर चैन तेनू मालक ने दिता वो किसी होर को नहीं। एक बारी पावन पंक्तियां कह दियो सारे, मिलदा पता कितों है, सो लगा सतगुरु सेव जा को कर्म तुर, जिन्हां दे कर्मां विच लिखिया होया है सतगुरां दी सेवा, सतगुरां दे वचनां नू जिंदगी विच का

0: प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी, इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करना, शब्द बाणी पढ़दे हां, होईयां भुलां दे खिमा करना जी। अज जिसने किता धन धन श्री गुरु गोबिंद महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े मनाए जा रहे हैं, सो आप जी सर्व संगतां नूं महाराज जी के प्रकाश पुरब दी लख लख वधाईयां होवन जी। आओ हुण अगला समां सरवण करदे हां। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। हमें का जगत में आयो, कर्म हेत को दे पठायो। हमें का जगत में आए, कर्म हेत को दे पठाए, जहां तहां तुम धर्म बिसारो, दुष्ट दोखियन फकर पिछारो। यह काज सरा हम जन्मन, समझ लो साधु सब मनमन, धर्म चलावन संत वारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन।

मन नू जे कोई सकून शांति दे सकता है वो महाराज दा नाम है। और ऐसी कोई पावर नहीं, ना पैसा, ना पदार्थ, ना तन दौलत, ना शोहरत, जे तेरे अंदर कोई चैन ते टिका बख्शिश कर सकता है वो सतगुरां दा नाम है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। महाराज कह रहे ने तेरी आत्मा दी, तेरे जी जी जी दी जिहो जी भी इच्छा रब ना करे कदे कोई औखा समा भी होवे ना तां भी अरदास कर। अक्सर लोकी दुखां विच ही अरदास करदे ने, सुखां विच ते सतगुरु कह रहे ने दुख तदे जा विसर जाए। दुख तां आउंदे ने जदों तू उन्नू भुल जांदा है। वड्डियां वड्डियां खुशियां विच फिर आपां शुकराना भुल जांदे। ऐसे ऐसे परिवार भी मौजूद ने। अपनी बेटी दी मैरिज है, ब्याह है, पर प्यो सारी पार्टियां सारे रिश्तेदार छड़ के अपना नेम निभाण चले जाता है। सारे रिश्तेदार कहंदे ने कित्थे चलिया गया, ते जिहड़े जाणदे सन ओह कहंदे ने भी दुनिया इधर दी इधर हो जाए उन्हें नेम नहीं छड़ना। अपनी बेटी दा ब्याह है पर नेम कुछ समय लई मिलन वास्ते अपना नेम निभाउण चले गए। जदों आए ते पुछया तुसी किते चले गए सी, ते फिर हाथ जोड़ के नीवी पा के कह दिता जिसने ये खुशियां दित्तियां उहदा शुकर करन दिया, जिन्ने ये विध बनाई उहदा शुकर करन गया सी। सतगुरु कह रहे ने कल्ला खुशियां दा मौका ही नहीं, कल्ले पदार्थ ही नहीं, मन नू भी ऐसी बख्शिश मिलती है। इंज लगता है भी तू ही बादशाह है, तेरे नालों सुखी कोई नहीं, तेरे वर्गा कोई होर नहीं। जेड़ा सबर चैन तेनू मालक ने दिता वो किसी होर को नहीं। एक बारी पावन पंक्तियां कह दियो सारे, मिलदा पता कित्थों है। सो लगा सतगुरु सेव जाको कर्म तो, जिन्हां दे कर्मां विच लिखिया होया है सतगुरां दी सेवा, सतगुरां दे बचनां नू जिंदगी विच कमाओ।